चुन चुन शत्र हमारे मारिय है, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय, पूजो सदा हमारे पच्छा श्री

तजकीनी पुत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरे सृष्ट दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरू दुष्ट जिते उठ।

सुनहु संतहु शब्द तरहु प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै।

तरस दिखाल सरवणी सुनी कहानियां जे गुर थी वै कृपाल देखन को मुस्ताक मुख के जेहा तो तनी फिरदा कितें

अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सचाया सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवनी सा।

तिस बिन अवर ना कोई राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी दे विच अमृत वेले हाजरियां भर रही गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, आप जी सारे ही धनता दे योग हो। सतगुरु जी रहमत करन, आप सबना जिया दियां हाजरियां दर प्रवान करते हुए सतगुरु जी इसे तरह अपने पावन चरणां दे नाल जोड़ के इस जीवन नूं सफलियां कर दे।

अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का एह सुआओ। आठ पहर प्रभ पेखो में नेरा, मिटय अज्ञान बिनसे अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उर तहार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परिखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच वापार करहो वापारी, दरगह निब है खेप तुम्हारी। ए काटे करखो मन माहे, नानक बहुर न आवै जाहे। तिसते दूर कहा को जाए, उबरै रख नहार त्याए। निरपाओ जपै सगल पाओ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन कौ कोई न पहुचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा। मात पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामे पुरख प्रधान। जिस मन बसै सोहो तिनिहाल, ताके निकट न आवत काल। अमर पहे अमरा पद पाया, साध संग नानक हर प्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक सखट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाए। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कह न जाई अचर्ज बिस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहया भगवंत। धरण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पाणी बै संतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे। तिसते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मह देख, ससी अर सूर नखियत्र मह एक। बाणी प्रभ की सब को बोलै, आप अडोल न कब हूं डोलै। सर्व कला कर खेलै खेल, मोल ना पाइय गुण है अमोल। सर्व ज्योत मैं जाति ज्योत, धार रहो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद भरम का नास, नानक तिन मैं एहो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख मानै, करण करावन हार प्रभ जानै। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देखो सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावै तां करे विस्थार, तिस भावै तां एकंकार। अनेक कला लकी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप आप भरपूर। अंतरगत जिसे आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्ब भूत आप वरतारा, सर्ब नैन आप पेखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सबके मध अलिपत रहै, जो किश कहना सो आपे कहै। आज्ञा आवै आज्ञा जाए, नानक जा पावै तां लय समाए। इस ते होए सुनाही बुरा, उरै कहो किने कश करा। आप भला करतूत आत निकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच।
ताकी गत मित कही न जाए, दूसर होय तां सोजी पाए, तिसका किया सब परवान। गुरप्रसाद नानक एहो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का इह सुआउ, जन कै संग चित आवन नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरह गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। आस अनित त्या बहुत रंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर तन के पर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चितव नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन। सुनत कमावत हो तो उधार, आप तर लोक निस्कार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उधरे तिन कै साथे। सारण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पए सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न पहे गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभी खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बस है सोहो तिने धान। सर्व इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवै आवन जान। हर तन खट चले जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता। ए फल तिस जन कै मुख पहने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग मैं ताकी गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कह मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ दे तत्काल उधारै। निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी। दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म। सब ते ऊचता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुखमनी। सब ते ऊचता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुखमनी। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

वक्त न पायो का दिया जे लिखण ले कुरान थित वार ना जोगी जाने रुतमा हो ना कोई जा करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई किव करे आका किव शालाई क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुए नानक जी को आपौ जाने अगै गया न सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कह निकवात सहस ठारह कहन कतिबा असलू एक धात लेखा हुए त लिखिए लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही ती सुरत न पाईया नदियां तैवा पवै समुंद न जानिए समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुलना हो बनी जे तिस मन हो न विसर है अंत न सिफती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुनन अंत अंत न जापै क्या मनमंत्र

साध विचारे, गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुर गा मच पयाले। गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे। गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे, श्री तुदनु गावह जू तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले। और गेते गावन से मैं चित नावन, नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सत साहिब। साचा साची नाई है पीओ सी जाय न जासी, रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन पाई। कार कर विखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई। सो पातशाह साहा पातशाहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख शर्म पा झोली ध्यान की करह विभूत। किंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश भुगत गया दया भंडारण। घट घट वाजै नाद आप नाथ, नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध। संजोग विजोग द्विकार चलावह लेखे आवह भाग, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले प्रवाण। एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान, जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। ओह वेखै ओ नानक।

फैजाई धर्म खंड कायहु धर्म ज्ञान खंड काया कुह करमु किते पवन पानी वै संतर किते कान महेश किते भरमे घाट घड़िय रूप रंग के वेश कितिया करम भूमि मेर किते किते धूप देश किते इंद चंद सूर किते किते मंडल देश किते सिद्ध बुद्ध नाथ किते किते देवी वेश किते देव दान मुन किते किते रतन समुंद कितिया खाणी कितिया बाणी किते पात नरिंद कितिया सुरती सेव किते नानक अंतनांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कूड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया न जाहे जिको कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन महराम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरहे न ठागे जाहे जिन कै राम वसह मन माहे तिथे भगत वसह के लो करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसह निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड ये को कथे तंत नंत तिथे लो लो आकार जिव जि हुकम तिवै तिवकार विखे विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्लागन तपताओ भांडा पाओ अमृत तटाल घड़िया शब्द सची टकसाल चिन्ह कौ नदर कर

अतीत हैं, अपीत हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंत हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं।

आलोक है, अशोक है, कर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अभा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयाचंद, नमो सर्व मान्य समस्ति निदानी, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, नंगे अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, परपंगी परमाते समस्ति विभूते, कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वर परम रूपे, नमो योग योगेश्वर परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणि, नमो वस्त्रमाणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो योग योगेश्वर परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रेतेवेषु धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साहसाह, नमो कूप कूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचदानं सर्वं परनासी, अनुपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्ध दाभ।

स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्त्वं नरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट छंद प्रसाद अमृत कर्मी अमृत धर्मी अखल जोगी अचल भोगी अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग याता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूरत जौन पुर कपार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रिशाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेत आद पुरखुदार मूर्त जाओ नाद रसेत देश और न पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर ततर दिशा विशा हुए फैल

पुनीत मूरत पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रच्यो सोयम पाव गण पंचन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत लख अपेश अंग राग नरंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमिक अनुष्ट तेक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग नातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम भेद प्राण जा कह नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार चंतव प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असुन अपंग उपमा नंगन पौ प्रकाश निष्ठ न नाश आ जान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंकान रंका लान काल अनपूतंग आबा अपंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अत्युत प्रचंड मितगत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य दंड बाढ़ चाचरी चंद्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दानी चत्र चक्र जानी चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय।

मुं अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र परथि सयादि सयादि सय करि सय भगवती चंत्व प्रसाद कथते के आ चिज देश है के आ भिज भेस है के आ गंज कर्म है के आ भंज भरम है के आ भिज लुक है के आदित सुख है के अवधूत बरने के विभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आशोक वर्ण है के सर्भ अपर्ण है के जगतंग कृति है के छत्रंग क्षत्रिय है के बर्मंग स्वरूप है के अनपहु अनूप है के आदि अदेव है के आपू अपेव है के चित्रंग बहीन है के कह अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रेहा कह के पाक बे है के गैबुल गैब है के फूल गुनाह है के साहन साह है के कारण पुनिंद है के रोजी देहंद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान्य है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं फहिम है के अकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुस्नल वजू है तमामुल रजू है हमीसल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीन उल जमान है तमीजुल तुमा मैरुजुअल निदान है हरीफुल अजीम मै रजा एक यकीन है अनिकल तरंग है अभेद है अभंग है अरिजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवुल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाध रूप है अनाथ स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिभाते अगंजे अगाते सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अचेज है अछूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवंग सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद

दास हैं, धंद हैं, बंध हैं, अभगत हैं, विरक्त हैं, अनाथ हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलेख हैं, अपीख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंत्व प्रसाद, सर्वंगहंता सर्वंगंता, सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग, सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग, सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता, रसावल छंत्व प्रसाद, नमो नरकनासी सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते, परमातं परमाते सदा सर्वसाते, अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते, अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे, निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते, निरसाकुं सरीके अमितो अमीके, सदैवं प्रभाहे अजय है अजा है, भगवती छंत्व प्रसाद, कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है, हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है, कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चराग है, कि कामल करीम है कि राजक रहीम है, कि रोजी देहंद है कि राजक रहिंद है, करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है, गनीमुल कि राज है गरीबुल निवाज है, हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है, कलंकंग प्रनाश है समस्तुल निवास है, अगंजुल गनी में रजाय करहीम है, समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है, कि नरकंग प्रनाश है बहस्तुल निवास है, के सर्वल गुवन है हमिशुल रुवन है, तमामुल तुमी जय समस्तुल अजीज है, परम परमी सह समस्तुल अदीस है, अदिशुल अलेख है हमिशुल अपीख है, जमीनुल जमा है हमिकुल इमा है, करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है, कि असलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है, कि अमितो पसा है।

हर बर अगांजू हर नर पर पांजू अनगन प्रणाम उन्मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अन पवन आस मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशे जीवांग आसन अपांग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिशविश अपांड जल थल महंत दिशविश पेयंत अन पवन आस त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओंकारात कथनी अनाद कलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जिगात अजिजनाबात अंचन जिगात अनरंज बात अंटुट भंडार अंडट अपारा डीट धर्म टीट कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर गोल मना छंत व प्रसाद करुणालय है अर काल्य है कल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकार है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कल खंडस है परते पर है करुणा कर है जपा जप है तपा तप है अकृता कृत मृता मृत अमृता मृत करुणा कृत्य कृता कृत्य तरणी त्रित अमितेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत मृता मृत जपा कृत मृता मृत नर नायक है कल कायक है विश्वम है करुणालय है नृप नायक है सर्पायक है पापंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकुलंकृत सर्वाकृत कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं तामसं शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूज

रूपे अलंकार लंके नमो वासासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कच्छरी छंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटा अनाथ्य प्रमाथे अजो नियमो नि नराग नरंगे न रूपे न रेखे करमंग परमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियंग करियंग करिमल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विभूते।

सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि उबास बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काबू, आप हाथ दै मुहे बचावहु। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन को वा संगरिय। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें चाट कोई अवर न त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री आस तुझ जू करे हो रच्छा। राख लिहो मुहि राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश पंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तुमासा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूठियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्छन उपजायो। आद अंत कह अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसे को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। शिव कन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलम बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तर तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जीते बदन सिर सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, वाद नील नाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जीती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिसजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि भूपांड। जेर से तजकीनी, उत पुज कान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट भयो शंकरी कैठा। शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगा स्वरूप स्वयं भव। अब रचा मेरी तुम करो, सिखो वार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठव तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रचा होए ताहि शुभ काला, दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला। कृपा दृष्टि दाहिने हरे हो, ताके ताप तनक में हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छाछ वस कह न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास तीता है उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा। कट के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ लिहो उबारी। सर्व ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। कृपा करे हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिक सकल देह को अर्ता, दुष्ट दुखिन को छय करता। श्री अस्तोजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़ेल सुने गोंग जो या ईश्वर से न पावई। सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भौ निकट न तिन नरके रह, हो जो या की एक बार। चौपाई को कहे चौपाई, संबत सत्रह सहस बनी जय। अर्थ सहस मुन तीन कही जय। भाद्र सुदिष्ट मेरा वारा, तीर

एक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक न जान्यो, श्री सुबान कृपा तुमरी कर, मैं न कहूँ सब तो हे बकान्यो, दोहरा सगल द्वार को चाट कह गयो तुहारू द्वार।

सत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तूटा

बिन सुहा बिन सतगुर सुहाग न हुईरा। निहचल राज सदा हर केरा, इस बिन अवर न कोई राम।

0: में सुख निकच महला पहला।
1: उड़ी उड़ियाई जा उड़ा ना उड़ी उड़ियाई जा सच नी आओ उड़ी उड़ियाई जा नी चलताओ उड़ी उड़ियाई जाने आलाओ उड़ी उड़ियाई बुझे सपाओ उड़ी

मत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख दुआर जति सत।

दरगाह अंदर पाया तगना तुट सपूत, तगना इंद्री तगना नारी पुलके तुप निदाड़ी, तगना पैरी तगना ती तगना।

जपिए हर बिंदु, कर हर कर्म सर्वन हर कथा, हर दर गए नानक उजल मथा। कर हर कर्म सर्वन हर कथा,

सच संजम सदा है निर्मल गुर कै शब्द विच शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिने आपे आपे उपाया नानक सदा फिर रावे अपना।

पाया अमृत नाम। करता तू मेरा जजमान, एक दक्षिणा हौ तै पह मांगौ, देह आपना नाम रहाओ। पंच तस्कर धावत राखे, चूका मन अभिमान, दिष्ट बिकारी दुर्मत भागी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जत सत चावल दया कणक, कर प्राप्त पाती धान, दूध कर्म संतोख कियो, कर ऐसा मांगो दान। खिमा धीरज कर गऊ लवेरी, सहजे बछरा खीर पिए, सिफत सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, हार गुण नानक रवत रहे। प्रभाती महला पहला। धावत

आपे खेल करे सब करता, ऐसा बूझ है कोई नाव प्रभाते शब्द त्याय छोड़ो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परभाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश लस्कर शब्द निवारिया तस्कर शब्द निवारिया नगर उठा साबास जा तू राख राख लहे साबत हो वैरास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत दे।

संसार ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदै मुझे प्यारा रहा जिस निंदै सोई बिद जाने गुर कै शब्दे दर निशाने कारण नाम अंतर्गत जाने जिसनु नदर करे सोई बिद जाने।

रहस रंग फुरमाए सकाई, पहनन खाना चीत न पाई, साच सहज सुख नाम वसाई, क्या जाना क्या करे करावे, नाम बिना तन किछ ना सुखावे, रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा, मत सत पाए भगत गोविंदा, दीना अकीरत कर्म कार निज संदा, अंत

गुरु का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा, जिन चाखिया पूरा पद होए, नानक त्राप्यो तन सुख होए। प्रभाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मानिया, अवर न रंगन हारा, एहनस जिया देख संभाले, किस ही की सरकारा।

भाव ऊपर कूप गगन पनहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विद जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल बिगासे सस घर सूर समाया काल बिंदुस मनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया आते रस रंग चलू लहराती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहिया प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह में रावल खप जावह चौछे में सन्यासी जोगी कापड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औहट हस्त में भीख्या जाची एक पाहे लिवलागी रहाओ ब्राह्मण वाद पड़े कर क्रिया करनी कर्म कमा कराए बिन बूझे किछ सूझै नाही मन मुख विछुड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचाचारी साची दरगह माने अन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संजम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुरु मिले मिलाया दुख पराचत काल नसे प्रभाती महला पहला संतां की रेन साध जन संगत हर कीरत तर तारी कहा करे पपुरा जम डर पै गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवै साध मना रहाओ गुरु उपदेश साच सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है चीने ज्ञान ध्यान धन साचो एक शब्द लिव लावे निरालंब निरहार नेह केवल निरपहु ताड़ी लावे सायर सप्त भरे जल निर्मल उल्टी नाव तरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख सहज समावे सो गिरही सो दासु दासी जिन गुरमुख आप पछाणिया नानक कहे अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख विरला कोई बूझे शब्दे रहा समाई नाम रते सदा सुख पावे साच रहे लिवलाई हर हर नाम जपो जन पाई गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे अन दिन हर रस रहा अघाई रहाओ अन दिन भगत करहु दिन राती इस जुग का लाहा पाई सदा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम चित लाई सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अखुट भंडार भरे कदे टोट न आवे सदा हर सेव हो पाई आपे करता जिसनु देवे तिस वसै मन आई नानक नाम त्याई सदा तू सतगुर दिया दिखाई परबाती।

तिनकी करहै प्रतपाल। आप कृपा कर रखो हर जियो, पोहे न साकै जमकाल। तेरी शरणाई सच्ची हर जियो, ना ओ कटै न जाए। जो हर छोड़ दूजै भाए लागै, ओह जम्मै तै मर जाए। जो तेरी शरणाई हर जियो, तिना दुख भूख किछ नाहे। नानक नाम सलाहे सदा तू, सच्चै शब्द समाहे। परभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा त्यावहो। जब लग जी प्राण, गुर शब्दी मन निर्मल हुआ। चूका मन अभिमान, सफल जन्म तिस प्राणी केरा। हर कै नाम समान, मेरे मन गुर की सिख सुनी जय। हर का नाम

सहजे ही सुख होई। गुर कै शब्द कमल परगासिया, हौ मैं दुर्मत खोई। सबना मह एको सच वरतै, विरला बूझै कोई। गुरमति मन निर्मल हुआ, अमृत तत्व खानै। हर का नाम सदा मन वसिया, विच मन ही मन मानै। सद बलिहारी गुरे अपने विटहो, जिते आत्म राम पछानै। मानस जन्म सतगुरु न सेविया, बिरथा जन्म गवाया। नदर करे ता सतगुर मिले, सहजे सहज समाया। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे भाग त्याया। प्रभाती महला तीजा, आपे भांत बनाए बहुरंगी। शिष्ट उपाए प्रभ खेल किया, कर कर वेखै करे कराए। सर्व जिया नो रिजक दिया, कली काल में रव्या राम। घट घट पूर रहया प्रभे को, गुरमुख प्रगट हर हर नाम। रहाओ गुप्ता नाम वरतै विच कल जुग, घट घट हर भरपूर रहया। नाम रतन तिना हिरदै प्रगटया, जो गुर सरणाई भज पया। इंद्री पंच पंचे वसियाणे, खिमा संतोख गुरमत पावै। सो धन धन हर जन वड पूरा, जो भय बैराग हर गुण गावै। गुर ते मुँह फेरे जे कोई, गुर का कहया न चित धरै। कर आचार बहु समको संचय, जो किछ खरै सो नरक परै। एको शब्द एको प्रभ वरतै, सब एक स्ते उत्पत चलै। नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख

रहाउ। अमृत नाम भोजन हर दे, कोट मध्ये कोई विर लाले। जिसनु अपनी नदर करे, गुर के चरण मन माहे बसाए। दुख अनेरा अंदर हो जाए।

सोई भगत सुगड़ सुजाना, नानक तिसकै सतगुरु बाणा। प्रभाती महला चौथा बिपास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रसक रसक गुण गावै गुरमत, लिव उन्मन नाम लगान। अमृत रस पिया गुरु शब्दी, हम नाम विटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम रिद अंतर पायो। गुरमंत दियो हर कान रहाओ, आवो संत मिलो मेरे भाई। मिल हर हर नाम वखान, कित बित क्यों पाई प्रभ अपना। मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत मैं हर हर वसिया। मिल संगत हर गुण जान, वड्डे भाग सत संगत पाई। गुरु सतगुरु परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के। गुण गाए रहे हैरान, जन नानक कौ गुर कृपा तारी। हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा, उगवै सूर गुरमुख हर बोलै। सब रैन संभालै हर गाल, हमरै प्रभ हम लोच लगाई। हम करै प्रभु हर

ऐसे सीकार करे देह मानुक, नाम बिना नकटे नक कीक। काट काट रमैया रमत राम राए, सब वर्ते सब मह एक। जन नानक कौ हर कृपा तारी, गुरबचन त्यायु करी मीक। परभाती महला चौथा, अगम दयाल कृपा प्रभतारी। मुख हर हर नाम हम कहे, पतत पावन हर नाम ते आयो। सब किल बिक पाप लहे, जप मन राम नाम रव रहे। दीन दयाल दुख भंजन गायो, गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ। काया नगर नगर हर बसेओ, मत गुरमत हर हर सहे। शरीर सरोवर नाम हर प्रगटेओ, घर मंदिर हर प्रभ लहे। जो नर परम परम उदयाने, ते साकत मूड मुहे। ज्यो मृग नाभ बसै बास बसना, भ्रम भ्रम्यो चार गहे। तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ, मत देव हर प्रभ लहे। जन नानक कौ गुर हाथ सिर धरयो, हर राम नाम रव रहे। परभाती महला चौथा, मन लागी प्रीत राम नाम। हर हर जप्यो हर प्रभ वडपा, सतगुर बचन सुखा नेहि अरै। हर धारी

काया नगर बस्यो घर मंदर, जप सोभा गुरमुख करपा, हलत फलत जन पए सुहेले, मुख उजल गुरमुख तरफा, अनुभव हर हर हर लिव लागी, हर उर धार्यो गुर निमख फा, कोट कोट के दोख सब जन के, हर दूर किए एक पलफा, तुमरे जन तुम ही ते जाने, प्रभ जान्यो जन ते मुखफा, हर हर आप धर्यो हर जन मह, जन नानक हर प्रभ इक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायु, हर हर हम मुए जीवे हर जपपा, धन धन गुरु गुर सतगुर पूरा, बिख डुबदे बहांदे कढबा, जप मन राम नाम अरदंभा, उपजंप उपाय न पाइए कतहु, गुरपूरै हर प्रभ लाभा रहाओ। राम नाम रस राम रसायन, रस पिया गुरमत रसबा, लोह मनूर कंचन मिल संगत, हर उर धार्यो गुर हरबा। हौ मैं बिखिया नित लोभ लुभाने, पुत कलत मोहि लुभगा, तिन पग संत न सेवे कबहूं, ते मन मुख भूंबर भरबा, तुमरे गुण तुम ही प्रभ जान हो, हम परे हार तुम शरण बा, ज्यों जानो त्यों राखो स्वामी,

सुन मन हरु हरु नामु करत्यानु, सुन मन हर कीरत अठसठ मजानु, सुन मन गुरमुख पावह मानु, जप मन परमेश्वर प्रधानु, खिन खूवै पाप कोटानु, मिल नानक हर भगवानु। प्रभाती महला पंजवां विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सहजा धरत बर्तन को पानी, निमख ना विसारो सेव सारग पानी, मन सतगुर से

रहाओ। कापड़ भोग रस अनिक पुंचाए, मात पिता कुटुंब सगल बनाए, रिजक समाहे।

सेवा लाई, सगला दुर्त मिटाया। हम बारिक शरण प्रभ दयालु, अवगन काट किए प्रभ अपने, राख लिए मेरे गुरु गोपाल। रहाओ ताप पाप बिन से खिन पीतर, पहे कृपाल गुसाई, सास सास पार ब्रह्म अराधि, अपने सतगुरु कै बल जाई। अगम गोचर बेअंत स्वामी, ताकांत न पाइये, लाहा खाट हुई है तनवंता, अपना प्रभु त्याइये। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलबिक सब नासे, सच नाम गुर दीनी रासे, प्रभ की दरगह शोभावंते, सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोख सब बिन सह, अज्ञान अंधेरा मन के जाई। रहो जन्म मरण गुर राखे मीत, जन्म मरण गुर राखे मीत, हर के नाम स्यों लागी प्रीत, कोट जन्म के गए कलेश, जो तिस पावे सो पल होश, तिस गुर का हो सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम ते आई। ऐसा गुर पाइय वडभागी, जिस मिलते राम लिव लागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। आठ पैर अपने लिव लाए, जन नानक प्रभ की शरण आए। प्रभाती महला पंजवा, कर कृपा अपने प्रभ किए, हर का नाम जपन को दिए, आठ पैर गुण गाए गोविंद, तह बिन से उतरी सब चिंद, उबरे सतगुर चरणी लाग, जो गुर कह सोई पल मीठा, मन की मत त्याग। रहाओ मन तन वसिया हर प्रभ सोई, कल कलेश किछ बिघन न हुई, सदा सदा प्रभ जी कै संग, उतरी मैल नाम कै रंग, चरण कमल स्यों लागू प्यार, बिन से काम क्रोध अहंकार, प्रभ मिलन का मार्ग जाना, पाए भगत हर स्यों मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगहय तोले, सदा सदा प्रभ गुण नित गाइये, कहो नानक वड भागी पाइये। प्रभाती महला।

लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मती मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी सच्चा साहेब व्यक्ति जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन सच कमाया सतगुरु मिलिए सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदीए पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड्डिए खात पढ़िए जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेखा एक गल हर हुक्मे झखना चाक महला पहला। लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बो तीर्थ पव्या ते तो लभ्या बो भे किया दे ही दुख दिया सो वह जी आए अपना किया अनन खाया साध गवाया बौथक पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे एनस कहरे मोल बिगूता क्यों जग विन सूता भगवत पाणा अपना किया कमाणा अलमल खाई सर छाई पाई मूर्खे अंधे पत गवाई मिणना में कछ थाए न पाए रहे बवाणी बड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन देसा ते नहर केवल होमे

मात पिता भाई सतबंध ननका बल है थोरा अनक रंग माया के पेखे किच साथ न चले भौरा ठाकुर तुद बिन आए न मोरा मोह अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आयो तुमरा धोरा रहाओ बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहा हुआ तुम्हारो जोरा सासंग नान खर दर्श पायो बिन सेव सगल न होरा गुजरी महला पंजमा आल जाल परम मोत जावे प्रभ से तीरंग लाई मन क्यों ए उपदेश जड़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस भेटे टूटे माया बन बिसरनक भू जाई रहो कत कत अनक भोपा तीनी की ए ठहराई मिर साधु हर जस गावे नानक भवजर पार तराई गुजरी महला पंजमा खिन मैं थाप थाप नारा कीमत जाए न करी राजा रंग करे खिन पीतर नीचो जोत तरी ते आइए अपनो सदा हरी सोचन दे साता का कहा करिए जा मह एक करी रहो तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी जेते आने बारक नानक हम तुमरा को धार करी गुजरी महला पंजमा तू दाता जी आ सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल माए समाये तय परमा देरा नाही ठाकर जा सिमरा तू नाही कर कृपा सर प्रतपालक प्रभु को

चल चल तरन गगन मैं नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ज्योत अपार। सर्व दर्श लोचन अवयंतर एका नदर त्रिपुण सार। पवन पाणी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश आकार। सर्वे जा चिक तू प्रभदाता दात करे अपने विचार। कोट तेतीस जात है प्रभ नायक दे दे टूट नाही भंडार। ऊंदे भांडे कुछ न समावे सीधे अमृत परे निहार। सिद्ध समाधि अंतर जाचै रिद्ध सिद्ध जाच करे जयकार। जैसी प्यास होए बने अंतर तैसे जल देवे प्रकार। बड़े भाग गुर सेव अपना भेद नाही गुरदेव मरार। ताको काल नाही जम जो न बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब और ना मांगू हर पै नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक यात्रक अमृत फल मांगे हर जस दीजे कृपा तार। गुजरी महला पहला ऐसी जन्म मरे आवे फन जावे बिन गुर गत नहीं काई। गुरमुख प्राणी नामे राते नामे गत में तपाई। भाई रे राम नाम चित लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहो। ऐ जी बहुते पेख करे पेख्या को के ते उदर भरण के ताई। बिन हर भक्त नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ न जाई। ऐ जी काल सदा सिरी ऊपर ठांडे जन्म जन्म बैराई। सचे शब्द रते सेवचे सतगुर बुझ बुझाई। गुर निसर नाई जो न सके दूत न सके संताई। अवगत नाथ निरंजन राते निरपौ से उसने बुलाई। ऐ जी ओ नाम दृढ़ो नाम होले बुलावे सतगुर टेक टकाए। जो तिस पावे सोई करसी कीर्तन मेटिया जाई। ऐ जी पाक परे गुर सरन तुम्हारी मैं अवना दूजी पाई। अब तब एको एक पकार वाद जुगाद सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझी सो बनाई। कर कृपा गुर गर्स दिखाव होमे शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किछ रहे ना दी से जग में आया जाई। नानक नाम पदार्थ जे हृदय कंठ बनाई। गुजरी महला पहला ऐ जी ना हम उत्तम नीच न मध्यम हर शरणागत हर के लोग। नाम रते के बल बैरागी सुयोग बिजोग सत जोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत उठा कर की सतगुर वाकर दे हर निर्मल ना जमका न जमकी। राव हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योत सभावे सहज हरी। बिन हर नाम प्रथा जग जीवन हर बिन ने फल मेक करी। ऐजी खोटे ठौर नाही कर बाहर निंदे गतनी काई। रोस करे प्रभक्ष न मेटे नितिन चढ़े सवाई। ऐजी गुर की दात न मेटे कोई मेरे ठाकरे आप दवाई। निंदे नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाई। ऐजी सरन परे प्रभक्ष मलावे बिलब न अधुआर आई। आनंद मूल नाथ सिर नाथा सतगुर मेर मलाई। ऐजी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमत भ्रमण चुकाई। पारस पेट कंचन धात होई सत्संगत की बड़ियाई। हर जन निर्मल मन स्नानी मजन सतगुर पाई। पुनर्प जन्म नाही जन संगत ज्योति ज्योत मलाई। तू बड़ पुरख अगमत रोवर हम पंखी तुझ माही। नानक नाम नरंजन दीजे जुग जुग शब्द सलाही। गुजरी महला पहला कर चौथा इको ओंकार सतगुर प्रसाद। भगत प्रेम आराधम सच प्यास परम हितिंग। बेलाभ बिल बेनंतियां सुख पाए चित हितिंग। जपन नाम हर सरनी संसार सागर तार। तन रम नाम कर करनी रहो ए मन मृत सुभ चिंतिंग। गुर शब्द हर रमणिंग मतत ज्ञान कल्याण धानिंग। हर नाम मन रमणिंग चल चित बित भ्रमिंग। योग परम अगन हितिंग तर नाम भगत दृढ़िंग। मती गुर वाक शब्द रतिंग परमात भ्रम न चूकी जन जन्म व्याप खपिंग। स्थान हर नह केवलिंग सतमती नाम तपिंग। ए जुग मैं हेत व्यापिंग दुख अधिक जन्म मरंग। पर शरण सतगुर उभरे हर नाम हृदय रमणिंग। गुरमत नह चल मन मनिंग सहज विचारिंग। सोमन निर्मल चित साज अंतर ज्ञान रतन सारंग। पै पाए भगत तर पवजर मना चित लाए हर चरणी। हर नाम हृदय पवित्र पावन ए शरीर तो सरणी। लव लोभ लहर निवार।

पावन देव भै त्रासनास किरपाल कुलनित सबल स्वामी सेव हर गोपाल हर गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार सब जग पम सिंध रहो काम क्रोध हरण मद मोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरनी तन पात रख परमानंद चलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर दुमंत छेद अंबेद करुणा मैं चिंत मेट पुरख आनंत सिमर समर्थ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण जाचिए रजाद मोहन मिथ दुरंत आसा वासना बेकार रख धर्म परम बिदार मन ते उदर हर निरंकार तनाड आड भंडार हर निध होत जनाना चीर खल मुक्त मूड कटाख सिरी दर पय गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद परीत जी दया मया सर्वतर रमणिंग परम हंसारीत देत दर्शन सर्वन हर जड़ रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक उत पते तो उधार देख दर्शन सर्वन हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उधार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु

0: परम
1: जब चिंत सर्वगतन केवल राम नाम मनोरम बद अमृत तत्मयम नाद नोत नाद नोत जस मरणेन जन्म जराद।